जलसा फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम स्ट्राइक्टर विनेश. हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें. दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेल लाइव स्ट्रीम में. मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और ये हमारा 698 जो एपिसोड है विद प्लेन्स मीडिया. जी हाँ, मैं हूँ प्रवीण डॉक्टर विनेश और मेरे साथ में पैनलिंग के साथ देने वाले हैं साहिल और हम कुछ गेस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं. सो देयर विल बी अ गेस्ट टुडे हम जिसके साथ में बात करेंगे एंड इट इज विल बी क्वाइट डिफरेंट टू द अदर इंटरव्यूज बिकॉज दिस टाइम शायद के बाद में इवन साहिल माइट अग्री कि पहली मरतबा है कि जो हमारा गेस्ट है जिससे हम इंटरव्यू या बातचीत करने वाले हैं शी इज लाइक आई टी एस.